0: The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated with immense religious fervor and grand enthusiasm across India. In the city of Mumbai, thousands of devotees throng the iconic Lal Baksha Raja Pandal. The iconic Pandal has been decorated with flowers as devotees queued up for hours to seek the blessings of Lord Ganesh. Citizens could be seen taking pictures of the idol, which has been decorated with jewelry and flowers. Furthermore, devotees share their experience of coming to the Lal Baksha Raja Pandal.
1: साढ़े छह बजे से खड़े हैं, तीन साल से आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, गणपति का दर्शन मिल रहा है हम लोग।
2: मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ, इससे पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद आया हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है।
3: We've been coming since last 10 years. We come from Mulund. And every year we make a point that we wait in the line for like 4-5 hours, and the excitement is always great. Though we have certain contacts, but that is probably from the second, third day. But the thrill of standing in the line for 5 hours and witnessing this is beautiful and divine.
0: It also marks the 93rd year of celebrations at the Lal Baksha Raja Pandal. Furthermore, at least 1.5 million devotees visit the Pandal for darshan during the 10-day extravaganza.
4: पाजू से यहाँ पे भाविक दर्शन के लिए आते हैं। 24 घंटा 10 दिन यहाँ पे लाल बाग राजा का दर्शन चालू रहते हैं और सिक्योरिटी के तौर पे मुंबई पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, बिकॉज हम लोग ये मानते हैं कि मुंबई पुलिस के बिना हमारे हिंदुस्तान का या मुंबई पुलिस के बिना मुंबई का कोई भी उत्सव पूरा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी है और हमारी भी रहती है। मंडल ने भी बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पे मुंबई पुलिस के साथ हमने लगाई है। इसके बाद हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे के सिस्टम है।
5: कितने सर लगभग सीसीटीवी कैमरास रहेंगे?
4: नियर अबाउट 280 कैमरास यहाँ पे लगाई है।
0: And VEON's principal correspondent Disha Yadav has sent us this ground report from the Lal Baksha Raja Pandal in Mumbai. Listen in.
5: The country's most loved festival, Ganesh Chaturthi, is here, and the excitement level in India's financial capital city can be seen by the crowd and the devotees that are coming in huge numbers, especially on the first day of the festival. And here we are at the famous Lal Baksha Raja, which is known as the biggest idol, not only in Mumbai, but the entire country per se. And you can see that how beautifully the idol has been decorated.

0: Contact was lost from the ferry after the captain reported rough seas with 3-meter waves. Authorities received a distress report 2 hours later before confirming the ship had overturned. The rescued passengers are receiving medical treatment at a temporary facility at the Trisakti port in Banjarmasin, where families are gathered. They're awaiting updates as well. Maritime safety concerns remain high in the region following 2 separate ferry fires last month, one off the Madura Island and another along a route from Bali that resulted in 6 fatalities. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated with immense religious fervor and grand enthusiasm across India. In the city of Mumbai, thousands of devotees throng the iconic Lal Bagsha Raja Pandal. The iconic pandal has been decorated with flowers as devotees queued up for hours to seek the blessings of Lord Ganesh. Citizens could be seen taking pictures of the idol, which has been decorated with jewelry and flowers. Devotees shared their experience of coming to the Lal Bagsha Raja Pandal.
1: मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ. इससे पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है.
2: वी बीन कमिंग सिंस लास्ट 10 इयर्स. वी कम फ्रॉम मुलुंड एंड एवरी ईयर वी मेक अ पॉइंट दैट वी वेट इन द लाइन फॉर लाइक 4-5 आवर्स एंड द एक्साइटमेंट इज ऑलवेज ग्रेट. दो वी हैव सर्टन कॉन्टैक्ट्स बट दैट इज प्रॉब्ली फ्रॉम द सेकेंड थर्ड डे. बट the thrill of standing in the line for 5 hours and witnessing this is beautiful and divine.
0: It also marks the 93rd year of the celebrations at the Lal Bagsha Raja Pandal. At least 1.5 million devotees visit the pandal for darshan during the 10-day extravaganza.
3: पाजू से यहाँ पे भाविक दर्शन के लिए आते हैं. 24 घंटा 10 दिन यहाँ पे लाल बाग राजा का दर्शन चालू रहता है और सिक्योरिटी के तौर पे मुंबई पुलिस प्रशासन हमारे साथ है. बिकॉज हम लोग ये मानते हैं कि मुंबई पुलिस के बिना हमारे हिंदुस्तान का या मुंबई पुलिस के बिना मुंबई का कोई भी उत्सव पूरा नहीं हो सकता. हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी है और हमारी भी रहती है. मंडल ने भी बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पे मुंबई पुलिस के साथ हमने लगाई है. इसके बाद हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे के सिस्टम है.
4: कितने सर लगभग सीसीटीवी कैमरास रहेंगे?
3: नियर अबाउट 280 कैमरास यहाँ पे लगाई है.
0: ऑलराइट, विद दैट इट्स अ रैप ऑन दिस एडिशन ऑफ पल्स. न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन बियॉन्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. बाय बाय.

0: The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated with immense religious fervor and grand enthusiasm across India. In the city of Mumbai, thousands of devotees throng the iconic Lal Baksha Raja Pandal. The iconic Pandal has been decorated with flowers as devotees queued up for hours to seek the blessings of Lord Ganesh. Citizens could be seen taking pictures of the idol, which has been decorated with jewelry and flowers. Furthermore, devotees share their experience of coming to the Lal Baksha Raja Pandal.
1: साढ़े छह बजे से खड़े हैं, तीन साल से आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, गणपति का दर्शन मिल रहा है हम लोग।
2: मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ, इससे पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद आया हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है।
3: We've been coming since last 10 years. We come from Mulund. And every year we make a point that we wait in the line for like 4-5 hours. And the excitement is always great. Though we have certain contacts, but that is probably from the second, third day. But the thrill of standing in the line for 5 hours and witnessing this is beautiful and divine.
0: It also marks the 93rd year of celebrations at the Lal Baksha Raja Pandal. Furthermore, at least 1.5 million devotees visit the Pandal for Darshan during the 10-day extravaganza.
4: पाजू से यहाँ पे भाविक दर्शन के लिए आते हैं। 24 घंटा 10 दिन यहाँ पे लाल बाग राजा का दर्शन चालू रहते हैं और सिक्योरिटी के तौर पे मुंबई पुलिस प्रशासन हमारे साथ है बिकॉज हम लोग ये मानते हैं कि मुंबई पुलिस के बिना हमारे हिंदुस्तान का या मुंबई पुलिस के बिना मुंबई का कोई भी उत्सव पूरा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी है और हमारी भी रहती है। मंडल ने भी बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पे मुंबई पुलिस के साथ हमने लगाई है। इसके बाद हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे के सिस्टम है।
5: कितने सर लगभग सीसीटीवी कैमरास रहेंगे?
4: नियर अबाउट 280 कैमरास यहाँ पे लगाई है।
0: And Vyond's principal correspondent Disha Yadav has sent us this ground report from the Lal Baksha Raja Pandal in Mumbai. Listen in.
5: The country's most loved festival, Ganesh Chaturthi, is here, and the excitement level in India's financial capital city can be seen by the crowd and the devotees that are coming in huge numbers, especially on the first day of the festival. And here we are at the famous Lal Baksha Raja, which is known as the biggest idol, not only in Mumbai, but the entire country per se. And you can see that how beautifully the idol has been decorated with gold, with silver, with ornaments. And this is the 93rd year of this Pandal and this idol, and you can see people have come in huge numbers.
0: Thousands took part in protests in Kenya's capital of Nairobi, which were led the Kenya's rising star Edwin Sifuna.